0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदवे के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदवे का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना उन्होंने 25 मई 2026 को की। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में मानव के कार्य के संबंध में विचार करते हुए उसे जनहित की भलाई हेतु समर्पित होने की बात कही, जो हमें मानवीय कमजोरियों को स्वीकारने तथा हमारे सभी कार्यों को सामाजिक भलाई की ओर केंद्रित करने का आह्वान करता है। अपनी प्रस्तावना के अंत में संत पापा लिखते हैं, अंत में जन सामान्य के हितों हेतु कार्य करना हमसे सुसामाचारी भाषा की मांग करती है। हमें चाहिए कि हम चोट पहुंचाने वाली या विरोधाभाव शब्दों से अपने को दूर करें। इसके बदले हमें चाहिए कि हम स्पष्टता के लिए खुला हों, जो हमें प्रकाशित करती है, और एक खुलापन जो हमारे लिए नई संभावनाओं को खोलती है। हम अनुभवहीन उत्साह को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बदले में हम आत्मपरक हेतु एक स्तर स्थापित करें। मानव का सम्मान, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, गरीबों के लिए विकल्प, सामान्य निवास की देखभाल और शांति, और हम इन मानकों का अभ्यास करें, जैसे कि उत्तरदायी रूप में योजना बनाने हेतु मानव और सामाजिक प्रभावकारिता का मूल्यांकन, अति संवेदनशीलों को सम्माहित करने, डिजिटल शिक्षण को प्रोत्साहन और दिशा निर्देशित शोध तथा न्याय और शांति के लिए स्थापना। संत पापा कहते हैं, हाल ही के जयंती वर्ष 2025 में हमने आशा के तीर्थ यात्रियों की तरह तीर्थ करते हुए अपने को असंख्य कृपाओं से पोषित किया है। इन उपहारों से मजबूत होते हुए हम अपने जीवन में विश्वास के संग आगे बढ़ते और कठिन कार्यों तथा चुनौतियों का सामना करते हैं, जो हमारे सामने आती है। कृत्रिम बुद्धिमता के इस दौर में, जब मानव सम्मान को हम नए रूपों में अमानवीयता का शिकार होता पाते हैं, यह हमारे लिए अति जरूरी कर्तव्य बनता है कि परिपूर्ण मानवीय बने रहें। हमें चाहिए कि हम प्रेम से मानवीय भव्यता की सुरक्षा करें, जो हमें दिया गया है और जो ख्रीस्त की पूर्णता में व्यक्त किया गया है, जिसकी अद्वितीयता को कोई भी यंत्र हस्तांतरित नहीं कर सकता है। सच्चे विकास की उत्पत्ति हमारे लिए अपने हृदयों को दूसरों के लिए खुला रखने से होती है। सुनने की एक विवेकपूर्ण चाह और एक चाह जो जोड़ने की खोज करती है, ना कि तोड़ने की। श्रोताओं, संत पापा लियो अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं कि मैं इस हृदय से उठने वाली इस अपील को कलिस्से के सभी विश्वासियों के लिए करता हूँ, सभी ख्रिस्तियों और नेक दिली नर और नारियों के लिए। आइए हम अपने समय के निर्माण स्थल को तैयार करने हेतु अपने हाथों को गंदा करने से ना डरें। नबी नेहमिया की भांति आइए हम प्रार्थना करें, विचारपूर्ण तरीके से योजना बनाएं और धैर्य में कार्य करें। ईश्वर को अपने कार्यों के सामने रखते हुए और मानव को हमारे चुनावों के केंद्र में स्थापित करते हुए इस भांति परित्यक्त पत्थर, दरिद्र, बीमार, शरणार्थी और सबसे छोटे लोग जो हमारे बीच में रहते हैं कोने का पत्थर बनेंगे और एक ठोस स्वागत करने वाला घर इस पृथ्वी पर उभर कर आएगा, जहां प्रेम और निष्ठा का अंततः मिलन होगा और धार्मिकता तथा शांति अपने में आलिंगन करेंगे। हम इस आशीष की कृपा ईश्वर से करते हैं और हमारे सामने जो कार्य खड़ा है वह एकता के निर्माण करता होना है, ना कि बाबेल के शिल्पकार होना। हम सभी आने वाले राज्य के सेवक गण हैं, ना कि उस मीनार के स्वामी जिसकी नियति नष्ट होने की है। एक चरवाही और पिता के हृदय से मैं हर एक से इस बात हेतु निवेदन करता हूँ कि आप पुनः एक दूसरे बाबिल के मीनार का निर्माण करना छोड़ें और अपनी ताकत को जन सामान्य की भलाई के निर्माण में उपयोग करें, जिससे मानवता अपनी सुंदरता कभी न खोई और दुनिया पुनः इस बात को पहचान सके कि मानव का हृदय वह स्थल है जहां ईश्वर निवास करने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, संत पापलियो 14वें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास का प्रथम अध्याय सुसमाचार के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण है। इस प्रथम अध्याय में संत पापा लियो कहते हैं कि मैं संक्षिप्त रूप में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करने की चाह रखता हूँ कि यह कैसे परम धर्म पीठ का धर्म सिद्धांत और द्वितीय वैटिकन महासभा का स्वरूप बना, जिससे इसकी बहुआयामी विशेषताएं प्रकट हो सकें। वास्तव में हर सदी में नई चीजों को चाहिए कि यह शिक्षा ऐतिहासिक सवालों को प्रकट की गई सच्चाई की ज्योति में सुलझाई जाए। इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हम सिर्फ एक अध्ययन की विषय वस्तु या एक समस्या स्वरूप नहीं ले सकते हैं जिसका हमें सामना करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इसे एक विकास की भांति देखने की जरूरत है जो हमारे सामाजिक धर्म सिद्धांत के स्वरूप को अंदर से चुनौती प्रदान करती है, जो हमें सुसमाचार के प्रति और अधिक निष्ठा में बढ़ने का आह्वान करती है। श्रोताओं, हालांकि यह अवलोकन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा अगर यदि हम संत पापाओं के व्यक्तिगत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर चिंतन करने से पहले कुछ विशेष आधारभूत सिद्धांतों के बारे में स्पष्टता हासिल नहीं करते जिनके आधार पर कलीसिया का अस्तित्व इतिहास में बना रहता और जिसके माध्यम वह दुनिया से जुड़ी रहती है। ऐसा करने की असफलता सामाजिक धर्म सिद्धांत को दुनियावी मामलों में गलत दखलअंदाजी या ऊपर से थोपा गया बाहरी नैतिक संहिता स्वरूप देख सकती है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति एक कलीसिया से होती है जो मानव के संग चलती, जो दुनिया की सच्चाइयों की आजादी को समझती और कलीसिया और राजनीतिक समुदायों के बीच के फर्क को पहचानती है। यही वजह है कि वह सबकी भलाई के लिए कार्य करती है। श्रोताओं, कलीसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है जहां वह अपनी विशेष बुलाहट सुनना, वार्ता और सेवा करने को पूरा करने हेतु अग्रसर होती है और वह वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करती और उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलीसिया का यह संलग्न होना उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इस कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचित के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलीसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रियाओं में सहभागी होती है जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्व में समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलिसिया की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता है कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारी कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें कस्तिल गंदोल्फो के प्रेरित आवास में करीब 3 हफ्ते तक अवकाश में व्यतीत करने के बाद वैटिकन लौटे। 27 जुलाई की शाम 8:30 बजे के बाद पोप कस्तिल गंदोल्फो से निकले। उन्होंने अपनी छुट्टियां 5 जुलाई को शुरू की थी। जब उनकी कार प्रेरित आवास से निकली तो पोप ने उन लोगों का अभिवादन किया जो उन्हें विदा करने के लिए एकत्रित थे और अपने माता पिता के साथ इंतजार कर रहे कई बच्चों को आशीर्वाद दिया। 29 जुलाई को शांति के भजन में शामिल होने के लिए पोप फिर से कस्तिल गंदोल्फो लौटेंगे, जो प्रार्थना और भाईचारे की सभा होगी। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी सेंटर के तत्वाधान में आयोजित अंद्रेया बोचेली फाउंडेशन का यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी के निधन की 8वीं सालगिरह के उत्सव का हिस्सा है। यह शाम 7 बजे कस्तिल गंदोल्फो के उद्यान में शुरू होगा। कस्तिल गंदोल्फो में 23 दिनों के अवकाश के दौरान पोप लियो ने प्रार्थना में समय व्यतीत की, अध्ययन एवं कुछ खेल कूद के लिए समय निकाला। रोम के बाहर अल्बान पहाड़ पर अल्बानो झील के सामने बसा यह छोटा सा शहर इटली के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। 5, 12, 19 एवं 26 जुलाई को देवदूत प्रार्थना में विश्वासों को संबोधित करने और उनसे मुलाकात करने के अलावा पोप लियो ने 2 और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 11 जुलाई को पोप ने रोमधाम प्रांत के उन 200 लोगों के साथ कस्तिल गंदोल्फो के उद्यान में भोजन किया जो सामाजिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहते हैं, जिनमें 35 बच्चे भी शामिल थे। एक हफ्ते के बाद 18 जुलाई को उन्होंने प्रेरितिक आवास के आंगन में अल्बानो धम प्रांत द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतिम सप्ताह में पोप लियो 3 व्यक्तिगत दौरे के लिए 2 बार बाहर निकले। 20 जुलाई को उन्होंने मोंते कसिनो के बेनेडिक्टाइन मठ का दौरा किया और 22 जुलाई को उन्होंने सुब्याको में संत बेनेडिक्ट एवं संत स्कोलास्टिका के मठों का दौरा करने से पहले वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा के तीर्थस्थल की यात्रा की। दुनिया भर के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक दल संत पापा लियो 14वें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर 29 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में शांति की प्रार्थना में शामिल होगा, जिसमें शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800 साल पूरा होने के उत्सव का हिस्सा है। संत पापा लियो 14वें संत फ्रांसिस के सृष्टि का गीत के शब्दों से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना एवं चिंतन का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक संगीत होगा। पौत्र भूमि युगांडा, हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार आएंगे। गायक दल में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद एवं मुलाकात की अहमियत को फिर से जानेंगे। पोप के साथ प्रार्थना एवं संगीत का यह समय 10 दिन की उस सभा का समापन है जिसने पहली बार वार्षिक गांव की भावना से संगीत के जरिए गायक दल एवं शिक्षकों को जोड़ा। लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र एवं अंद्रेया बोचेली संस्थान की एक संयुक्त प्रेस रिलीज में लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बाजो ने बताया कि शांति का गीत कार्यक्रम दिखाता है कि कैसे बोर्गो एक ऐसी जगह है जहां विश्वास को मुलाकात, शिक्षा और भाईचारे के ठोस चिन्हों में बदला जाता है। बढ़ते झगड़ों और बंटवारे वाले दुनिया में कार्डिनल फाबियो ने इस बात पर जोर दिया कि संत फ्रांसिस के गीत से प्रेरित इस सभा में संत पापा लियो के साथ अलग अलग तरह के युवाओं को एक साथ लाना इस बात का प्रमाण है कि शांति सबसे पहले और सबसे बढ़कर मुलाकात, बातचीत और आपसी देखभाल के लिए शिक्षित करके बनाई जाती है। यही बोर्गो लाउदातो सी का मिशन है। इसका मकसद दुनिया के कोने कोने तक शांति की संस्कृति को साझा करना है, एक ऐसी संस्कृति जो भाईचारे, देखभाल और दुनिया के प्रति सम्मान एवं हर व्यक्ति की गरिमा पर आधारित हो। एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC ने अपनी 12वीं महासभा को एशिया के लोगों के लिए अपने अंतिम संदेश जारी करते हुए समाप्त किया। संघ ने पूरे महादेश की कलीसिया से कहा कि वह विभाजन, भेदभाव और तेजी से बढ़ते समाज में पुल एवं पुल निर्माता बनकर अपनी सिनोडल यात्रा को और सशक्त करे।
जकार्ता के माता मरियम के स्वर्गरोहण महागिरजा घर में महासभा समापन के लिए अर्पित मिस्सा बलिदान में तुम इससे भी महान चीज देखोगे विषय वस्तु पर एक संदेश सुनाया गया, जिस पर महासभा में हिस्सा लेने वालों की ओर से गोवा और दमन के महाधर्माध्यक्ष एवं FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने हस्ताक्षर किए हैं। एशिया के सभी भले लोगों को संबोधित यह संदेश सिनोडल एकता और एशिया में पुल एवं पुल निर्माता बनने के मिशन विषय वस्तु के तहत हुए एक हफ्ते तक चलने वाली महासभा के आध्यात्मिक फलों को दर्शाता है। पूरे एशिया के धर्माध्यक्ष प्रतिनिधि और साझेदार तेजी से बदलती दुनिया में कलीसिया के मिशन को समझने के लिए एकत्रित हुए थे। यीशु के नथानाएल से कहे शब्दों तुम और भी महान चीजें देखोगे से प्रेरित होकर धर्माध्यक्ष ने कहा कि महासभा ने हिस्सा लेने वालों को डर और सीमाओं से आगे बढ़कर ईश्वर के राज के एक नए नजरिए की ओर बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि सिनोडालिटी सिर्फ राज करने का एक तरीका नहीं है बल्कि मिशन की ओर ले जाने वाला बदलाव का रास्ता है। यह इस बात पर जोर देता है कि असली बदलाव कलीसिया की संरचना एवं संस्थान में दिखने से पहले परिवर्तित दिलों गहरे रिश्तों और ध्यान से सुनने से शुरू होता है। प्रार्थना शांति सुनने और आत्मा में बातचीत के दिनों पर चिंतन करते हुए धर्माध्यक्ष ने यह पक्का यकीन जताया कि एशिया में कलीसिया को लगातार सिनोडल बदलाव के जरिए महाद्वीप की समृद्ध सांस्कृति धार्मिक और सामाजिक विविधता को अपनाकर पुल बनाने के लिए बुलाया गया है। महासभा ने एशिया के सामने मौजूद कई चुनौतियों को भी स्वीकार किया। इनके जवाब में धर्माध्यक्षों ने कलीसिया से उम्मीद बातचीत मेल मिलाप और एकजुटता की निशानी बनने की अपील की और पूरे महादेश में एकता को बढ़ावा देकर और सबकी भलाई के लिए काम करके मसीह की गवाही देने का प्रोत्साहन दिया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो चौदहवें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास की चर्चा शुरू की है। यह संत पापा लियो चौदहवें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना उन्होंने 25 मई 2026 को की। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। हमने अपने विगत प्रसारण में मानव के कार्य के संबंध में विचार करते हुए उसे जनहित की भलाई हेतु समर्पित होने की बात कही, जो हमें मानवीय कमजोरियों को स्वीकारने तथा हमारे सभी कार्यों को सामाजिक भलाई की ओर केंद्रित करने का आह्वान करता है। अपनी प्रस्तावना के अंत में संत पापा लिखते हैं, अंत में जन सामान्य के हितों हेतु कार्य करना हमसे सुसामाचारी भाषा की मांग करती है। हमें चाहिए कि हम चोट पहुंचाने वाली या विरोधाभाव शब्दों से अपने को दूर करें। इसके बदले हमें चाहिए कि हम स्पष्टता के लिए खुला हों, जो हमें प्रकाशित करती है, और एक खुलापन जो हमारे लिए नई संभावनाओं को खोलती है। हम अनुभवहीन उत्साह को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बदले में हम आत्मपरक हेतु एक स्तर स्थापित करें। मानव का सम्मान, चीजों का वैश्विक लक्ष्य, गरीबों के लिए विकल्प, सामान्य निवास की देखभाल और शांति, और हम इन मानकों का अभ्यास करें, जैसे कि उत्तरदायी रूप में योजना बनाने हेतु मानव और सामाजिक प्रभावकारिता का मूल्यांकन, अति संवेदनशीलों को सम्माहित करने, डिजिटल शिक्षण को प्रोत्साहन और दिशा निर्देशित शोध तथा न्याय और शांति के लिए स्थापना। संत पापा कहते हैं, हाल ही के जयंती वर्ष 2025 में हमने आशा के तीर्थ यात्रियों की तरह तीर्थ करते हुए अपने को असंख्य कृपाओं से पोषित किया है। इन उपहारों से मजबूत होते हुए हम अपने जीवन में विश्वास के संग आगे बढ़ते और कठिन कार्यों तथा चुनौतियों का सामना करते हैं, जो हमारे सामने आती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में, जब मानव सम्मान को हम नए रूपों में अमानवीयता का शिकार होता पाते हैं, यह हमारे लिए अति जरूरी कर्तव्य बनता है कि परिपूर्ण मानवीय बने रहें। हमें चाहिए कि हम प्रेम से मानवीय भव्यता की सुरक्षा करें, जो हमें दिया गया है और जो ख्रीस्त की पूर्णता में व्यक्त किया गया है, जिसकी अद्वितीयता को कोई भी यंत्र हस्तांतरित नहीं कर सकता है। सच्चे विकास की उत्पत्ति हमारे लिए अपने हृदयों को दूसरों के लिए खुला रखने से होती है। सुनने की एक विवेकपूर्ण चाह और एक चाह जो जोड़ने की खोज करती है, ना कि तोड़ने की। श्रोताओं, संत पापा लियो अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं कि मैं इस हृदय से उठने वाली इस अपील को कलिसिया के सभी विश्वासियों के लिए करता हूँ, सभी ख्रिस्तियों और नेक दिली नर और नारियों के लिए। आइए हम अपने समय के निर्माण स्थल को तैयार करने हेतु अपने हाथों को गंदा करने से ना डरें। नबी नेहमिया की भांति आइए हम प्रार्थना करें, विचारपूर्ण तरीके से योजना बनाएं और धैर्य में कार्य करें। ईश्वर को अपने कार्यों के सामने रखते हुए और मानव को हमारे चुनावों के केंद्र में स्थापित करते हुए। इस भांति परित्यक्त पत्थर, दरिद्र, बीमार, शरणार्थी और सबसे छोटे लोग जो हमारे बीच में रहते हैं कोने का पत्थर बनेंगे और एक ठोस स्वागत करने वाला घर इस पृथ्वी पर उभर कर आएगा, जहां प्रेम और निष्ठा का अंततः मिलन होगा और धार्मिकता तथा शांति अपने में आलिंगन करेंगे। हम इस आशीष की कृपा ईश्वर से करते हैं और हमारे सामने जो कार्य खड़ा है वह एकता के निर्माण करता होना है, ना कि बाबेल के शिल्पकार होना। हम सभी आने वाले राज्य के सेवक गण हैं, ना कि उस मीनार के स्वामी जिसकी नियति नष्ट होने की है। एक चरवाही और पिता के हृदय से मैं हर एक से इस बात हेतु निवेदन करता हूँ कि आप पुनः एक दूसरे बाबिल के मीनार का निर्माण करना छोड़ें और अपनी ताकत को जन सामान्य की भलाई के निर्माण में उपयोग करें, जिससे मानवता अपनी सुंदरता कभी न खोई और दुनिया पुनः इस बात को पहचान सके कि मानव का हृदय वह स्थल है जहां ईश्वर निवास करने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, संत पापलियो 14वें के विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास का प्रथम अध्याय सुसमाचार के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण है। इस प्रथम अध्याय में संत पापा लियो कहते हैं कि मैं संक्षिप्त रूप में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करने की चाह रखता हूं कि यह कैसे परम धर्म पीठ का धर्म सिद्धांत और द्वितीय वैटिकन महासभा का स्वरूप बना, जिससे इसकी बहुआयामी विशेषताएं प्रकट हो सकें। वास्तव में हर सदी में नई चीजों को चाहिए कि यह शिक्षा ऐतिहासिक सवालों को प्रकट की गई सच्चाई की ज्योति में सुलझाई जाए। इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हम सिर्फ एक अध्ययन की विषय वस्तु या एक समस्या स्वरूप नहीं ले सकते हैं जिसका हमें सामना करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इसे एक विकास की भांति देखने की जरूरत है जो हमारे सामाजिक धर्म सिद्धांत के स्वरूप को अंदर से चुनौती प्रदान करती है, जो हमें सुसमाचार के प्रति और अधिक निष्ठा में बढ़ने का आह्वान करती है। श्रोताओ, हालांकि यह अवलोकन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा अगर यदि हम संत पापाओं के व्यक्तिगत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर चिंतन करने से पहले कुछ विशेष आधारभूत सिद्धांतों के बारे में स्पष्टता हासिल नहीं करते, जिनके आधार पर कलीसिया का अस्तित्व इतिहास में बना रहता और जिसके माध्यम वह दुनिया से जुड़ी रहती है। ऐसा करने की असफलता सामाजिक धर्म सिद्धांत को दुनियावी मामलों में गलत दखलअंदाजी या ऊपर से थोपा गया बाहरी नैतिक संहिता स्वरूप देख सकती है। वास्तव में इसकी उत्पत्ति एक कलीसिया से होती है जो मानव के संग चलती, जो दुनिया की सच्चाइयों की आजादी को समझती और कलीसिया और राजनीतिक समुदायों के बीच के फर्क को पहचानती है। यही वजह है कि वह सबकी भलाई के लिए कार्य करती है। श्रोताओं, कलीसिया दुनिया में संपूर्ण मानव परिवार के लिए एकता की एक निशानी स्वरूप उपस्थित है। वह आज के सवालों और चुनौतियों को समझती है जहां वह अपनी विशेष बुलाहट सुनना, वार्ता और सेवा करने को पूरा करने हेतु अग्रसर होती है और वह वर्तमान समय के नर नारियों के जीवन और हर बात की चिंता करती और उसका प्रत्युत्तर देती है। लोगों के जीवन में कलीसिया का यह संलग्न होना उसे और गहराई से अपनी प्रेरिताई को समझने में मदद करती है कि उसका एक ऐतिहासिक दायरा है और उसमें सामाजिक संबंध बनाने के तरीके की जिम्मेदारी शामिल है। इस कारण से समाज निर्माण की शक्तियों के संबंध में वह एक अपरिचित के रूप में नहीं देखी जा सकती है। इसके विपरीत कलीसिया सक्रिय रूप से उन प्रक्रियाओं में सहभागी होती है जिनके द्वारा समाज का निर्माण और विकास होता है और वह अपनी ओर से एक बेहतर और भ्रातृत्व में समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में कलीसिया की प्रेरिताई के ऐतिहासिक आयाम पर जोर देते हैं। कोई भी यह मांग नहीं कर सकता है कि धर्म को निजी जीवन के अंदरूनी हिस्से तक सीमित कर दिया जाए, उसका सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर कोई प्रभाव ना हो, उसे नागरिक संस्थानों की मजबूती की कोई चिंता ना हो, समाज को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर उसका राय देने का अधिकार ना हो। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें कस्तेल गंदोल्फो के प्रेरित आवास में करीब 3 हफ्ते तक अवकाश में व्यतीत करने के बाद वैटिकन लौटे। 27 जुलाई की शाम 8:30 के बाद पोप कस्तेल गंदोल्फो से निकले। उन्होंने अपनी छुट्टियां 5 जुलाई को शुरू की थी। जब उनकी कार प्रेरितिक आवास से निकली तो पोप ने उन लोगों का अभिवादन किया जो उन्हें विदा करने के लिए एकत्रित थे और अपने माता पिता के साथ इंतजार कर रहे कई बच्चों को आशीर्वाद दिया। 29 जुलाई को शांति के भजन में शामिल होने के लिए पोप फिर से कस्तेल गंदोल्फो लौटेंगे, जो प्रार्थना और भाईचारे की सभा होगी। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी सेंटर के तत्वाधान में आयोजित अंद्रेया बोचेले फाउंडेशन का यह कार्यक्रम संत फ्रांसिस असीसी के निधन की 8वीं सालगिरह के उत्सव का हिस्सा है। यह शाम 7:00 कस्तेल गंदोल्फो के उद्यान में शुरू होगा। कस्तेल गंदोल्फो में 23 दिनों के अवकाश के दौरान पोप लियो ने प्रार्थना में समय व्यतीत की, अध्ययन एवं कुछ खेल कूद के लिए समय निकाला। रोम के बाहर अल्बान पहाड़ पर अल्बानो झील के सामने बसा यह छोटा सा शहर इटली के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। 5, 12, 19 एवं 26 जुलाई को देवदूत प्रार्थना में विश्वासों को संबोधित करने और उनसे मुलाकात करने के अलावा पोप लियो ने 2 और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 11 जुलाई को पोप ने रोमधम प्रांत के उन 200 लोगों के साथ कस्तेल गंदोल्फो के उद्यान में भोजन किया जो सामाजिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहते हैं, जिनमें 35 बच्चे भी शामिल थे। एक हफ्ते के बाद 18 जुलाई को उन्होंने प्रेरितिक आवास के आंगन में अल्बानो धम प्रांत द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतिम सप्ताह में पोप लियो 3 व्यक्तिगत दौरे के लिए 2 बार बाहर निकले। 20 जुलाई को उन्होंने मोंते कसिनो के बेनेडिक्टाइन मठ का दौरा किया और 22 जुलाई को उन्होंने सुब्याको में संत बेनेडिक्ट एवं संत स्कोलास्टिका के मठों का दौरा करने से पहले वाले पियत्रा में पौत्रित्वा के तीर्थस्थल की यात्रा की। दुनिया भर के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक दल संत पापा लियो 14वें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर 29 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में शांति की प्रार्थना में शामिल होगा, जिसमें शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800 साल पूरा होने के उत्सव का हिस्सा है। संत पापा लियो 14वें संत फ्रांसिस की सृष्टि का गीत के शब्दों से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना एवं चिंतन का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक संगीत होगा। पौत्र भूमि युगांडा, हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार आएंगे। गायक दल में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद एवं मुलाकात की अहमियत को फिर से जानेंगे। पोप के साथ प्रार्थना एवं संगीत का यह समय 10 दिन की उस सभा का समापन है जिसने पहली बार वार्षिक गांव की भावना से संगीत के जरिए गायक दल एवं शिक्षकों को जोड़ा। लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र एवं अंद्रेया बोचेली संस्थान की एक संयुक्त प्रेस रिलीज में लाउदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बाजो ने बताया कि शांति का गीत कार्यक्रम दिखाता है कि कैसे बोर्गो एक ऐसी जगह है जहां विश्वास को मुलाकात, शिक्षा और भाईचारे के ठोस चिन्हों में बदला जाता है। बढ़ते झगड़ों और बंटवारे वाले दुनिया में कार्डिनल फाबियो ने इस बात पर जोर दिया कि संत फ्रांसिस के गीत से प्रेरित इस सभा में संत पापा लियो के साथ अलग अलग तरह के युवाओं को एक साथ लाना इस बात का प्रमाण है कि शांति सबसे पहले और सबसे बढ़कर मुलाकात, बातचीत और आपसी देखभाल के लिए शिक्षित करके बनाई जाती है। यही बोर्गो लाउदातो सी का मिशन है। इसका मकसद दुनिया के कोने कोने तक शांति की संस्कृति को साझा करना है, एक ऐसी संस्कृति जो भाईचारे, देखभाल और दुनिया के प्रति सम्मान एवं हर व्यक्ति की गरिमा पर आधारित हो। एशिया के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के संघ FABC ने अपनी 12वीं महासभा को एशिया के लोगों के लिए अपने अंतिम संदेश जारी करते हुए समाप्त किया। संघ ने पूरे महादेश की कलीसिया से कहा कि वह विभाजन, भेदभाव और तेजी से बढ़ते समाज में पुल एवं पुल निर्माता बनकर अपनी सिनोडल यात्रा को और सशक्त करें। जकार्ता के माता मरियम के स्वर्गारोहण महागिरजा घर में महासभा समापन के लिए अर्पित मिस्सा बलिदान में
तुम इससे भी महान चीज देखोगे। विषय वस्तु पर एक संदेश सुनाया गया जिस पर महासभा में हिस्सा लेने वालों की ओर से गोवा और दमन के महाधर्माध्यक्ष एवं एफएबीसी के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने हस्ताक्षर किए हैं। एशिया के सभी भले लोगों को संबोधित यह संदेश सिनोडल एकता और एशिया में पुल एवं पुल निर्माता बनने के मिशन विषय वस्तु के तहत हुए एक हफ्ते तक चलने वाली महासभा के आध्यात्मिक फलों को दर्शाता है। पूरे एशिया के धर्माध्यक्ष प्रतिनिधि और साझेदार तेजी से बदलती दुनिया में कलीसिया के मिशन को समझने के लिए एकत्रित हुए थे। येसु के नथानाइल से कहे शब्दों तुम और भी महान चीजें देखोगे से प्रेरित होकर धर्माध्यक्ष ने कहा कि महासभा ने हिस्सा लेने वालों को डर और सीमाओं से आगे बढ़कर ईश्वर के राज के एक नए नजरिए की ओर बढ़ने के लिए आमंत्रित किया। संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि सिनोडालिटी सिर्फ राज करने का एक तरीका नहीं है बल्कि मिशन की ओर ले जाने वाला बदलाव का रास्ता है। यह इस बात पर जोर देता है कि असली बदलाव कलीसिया की संरचना एवं संस्थान में दिखने से पहले परिवर्तित दिलों गहरे रिश्तों और ध्यान से सुनने से शुरू होता है। प्रार्थना शांति सुनने और आत्मा में बातचीत के दिनों पर चिंतन करते हुए धर्माध्यक्ष ने यह पक्का यकीन जताया कि एशिया में कलीसिया को लगातार सिनोडल बदलाव के जरिए महाद्वीप की समृद्ध सांस्कृति धार्मिक और सामाजिक विविधता को अपनाकर पुल बनाने के लिए बुलाया गया है। महासभा ने एशिया के सामने मौजूद कई चुनौतियों को भी स्वीकार किया। इनके जवाब में धर्माध्यक्षों ने कलीसिया से उम्मीद बातचीत मेल मिलाप और एकजुटता की निशानी बनने की अपील की और पूरे महादेश में एकता को बढ़ावा देकर और सबकी भलाई के लिए काम करके मसीह की गवाही देने का प्रोत्साहन दिया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत को कन्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं,
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु

0: लिए प्रार्थना कर,
1: रोगियों का स्वास्थ्य
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: पापियों की शरण
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: दुखियों का दिलासा
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: ख्रिस्तियों की सहायता
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्गदूतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: धर्मपुरखों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: नवियों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: प्रेरितों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शहीदों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: धर्मवीरों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: संतों की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: अति पवित्र माला की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शांति की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।

0: हे मरियम
1: मरियम
0: की
1: की प्रार्थना
0: द्वारा
1: द्वारा
0: हमको
1: हमको
0: इस
1: इस
0: लोक
1: लोक
0: से
1: के दुख
0: दुख
1: से
0: से मुक्त
1: मुक्त
0: होकर
1: होकर
0: अनंत
1: अनंत
0: सुख
1: सुख
0: भोगने
1: भोगने दे,
0: दे। क्रिस्त
1: क्रिस्त हमारे
0: हमारे
1: प्रभु
0: प्रभु
1: के
0: के
1: द्वारा
0: द्वारा
1: आमेन।
0: आमेन।
1: पिता
0: पिता
1: और
0: और
1: पुत्र
0: पुत्र

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है 2025 में दादा दादियों और बुजुर्गों के लिए संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें संत अन्ना और संत ज्वाकिम पर्व के अवसर पर 2025 माता कलीसिया द्वारा स्थापित दादा दादियों और बुजुर्गों के 5वें विश्व दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा था कि आशा हमारे लिए निरंतर एक खुशी का उद्गम बनती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। उस आशा को जब लंबी उम्मीद की चाह स्वरूप आग में तपाई जाती है तो वह हमारे लिए एक गहरी खुशी का स्रोत बनती है। बुजुर्गों को दिए गए अपने संदेश में संत पापा

लियो ने कहा कि पवित्र धर्म ग्रंथ हमारे लिए इसका अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिन्हें ईश्वर ने अपने जीवन की बढ़ती आयु में अपनी मुक्ति योजना का अंग बनाया। हम अब्राहम और सारा के उम्र के बारे में विचार कर सकते हैं, जो ईश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करने हेतु कठिनाई का अनुभव करते हैं कि उन्हें एक पुत्र मिलेगा। उनकी संतानहीनता उन्हें भविष्य के लिए आशाहीन बना देती है। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म संदेश के संबंध में भी जकरयाह को ऐसा ही प्रतीत होता है। यह कैसे हो सकता है? मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी पत्नी की उम्र ढल चुकी है। बुजुर्ग अवस्था, बांझपन और शारीरिक ढलान इन नर नारियों में जीवन के प्रति आशा और उर्वरकता को धूमिल कर देती है। निकोदेमुस के द्वारा यीशु को पूछे गए सवाल में स्वामी का पुनः जन्म लेने की बात हमारे लिए अलंकारपूर्ण लगता है। बुढ़ापे में एक व्यक्ति पुनः कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर पुनः जन्म ले सकता है? यद्यपि जब कभी हम यह सोचते कि चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, ईश्वर हमें अपने मुक्ति की शक्ति से आश्चर्यचकित करते हैं। संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा कि ईश्वर निरंतर अपनी दिव्य शक्ति को लोगों की बढ़ती आयु में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा केवल अब्राहम और सारा, जकरियस और एलिजाबेथ के संग नहीं होता है, लेकिन हम इसे मूसा के साथ भी घटित होता पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने लोगों की मुक्ति हेतु 80 साल की आयु में बुलाते हैं। ईश्वर इस भांति हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनकी दृष्टि में बुजुर्गावस्था कृपा और आशीष का एक समय है और बुजुर्ग जन उनके लिए आशा के प्रथम साक्षी हैं। संत अगुस्टिन कहते हैं, अपनी शक्ति को क्षीण होने दो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर वास करे और तुम प्रेरित के संग कह सको, जब मैं कमजोर हूँ तो मैं अपने में शक्तिशाली हूँ। लोगों का उम्र में बढ़ना हमारे लिए एक निशानी है कि हम आत्मपरख करने हेतु बुलाए गए हैं, जिससे हम इतिहास के इस क्षण को अनुभव कर सकें। संत पापा लियो ने अपने संदेश में आगे कहा कि कलिसिया और दुनिया को हम पीढ़ियों के ज्योति रूपी आड़ में समझ सकते हैं। बुजुर्ग अवस्था का आलिंगन करना हमारे लिए इस बात को समझने में मदद करता है कि जीवन वर्तमान पड़ाव से बढ़कर है, जिसे हम पिछली चीजों और व्यर्थ के संबंधों में नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में जीवन सदैव भविष्य की ओर इंगित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम याकूब के द्वारा अपने नाती पोतों को, योसेफ के संतानों को दिए गए आशीर्वाद की चर्चा सुनते हैं। वे उन्हें भविष्य की ओर आशा में देखने की अपील करते हैं, जहां ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। यदि यह सच है कि कमजोर बुजुर्गों को युवा शक्ति की जरूरत हो, तो यह उतनी ही सच्चाई है कि अनुभवहीन युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव रूपी साक्ष्य की आवश्यकता है, जिससे वे विवेक में भविष्य का निर्माण कर सकें। कितनी बार हमारे दादा दादी, नाना नानी हमारे लिए भक्ति, सामाजिक गुण और निष्ठा, यादों और परीक्षा की घड़ी में धैर्य के उदाहरण बनते हैं। उनके द्वारा आशा और प्रेम में मिली मूल्यवान विरासत हमारे लिए सदैव कृतज्ञता और धैर्य में बने रहने का एक स्रोत बनता है। संत पापा लियो कहते हैं, हम बुजुर्गों की सेवा करने को बुलाए जाते हैं, जिससे वे मुक्ति का अनुभव कर सकें, विशेषकर अकेलेपन और छोड़ दिए गए भाव से। बुजुर्गावस्था कृपा की स्थिति है, जहां उदासीनता से दूर हम उनकी सेवा करते हुए सुसमाचार की खुशी का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में संत पापा हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हैं कि हर पल्ली, संघ और कलिसियाई दल को चाहिए कि वे अपने में अगुवे बने एक आंदोलन की, जिसमें कृतज्ञता और सेवा के भाव हों, जहां हम बुजुर्गों की निरंतर भेंट करते हों, उनके लिए तथा उनके संग प्रार्थना और सेवा के तंत्र स्थापित करते हों। हम परित्यक्त जनों के संग संबंध स्थापित करते हों, जिससे वे आशा और मानवीय सम्मान का अनुभव करें। ख्रिस्तीय विश्वास हमें अधिक साहसी,
बड़ा सोचने और वर्तमान चीजों से असंतुष्ट होने को प्रेरित करता है। यह हमें परिवर्तन हेतु कार्य करने की मांग करता है, जिससे बुजुर्गों को प्रेम और सम्मान मिल सके जिसके वे हकदार हैं। संत पापालियो चौदवें ने कहा, प्रवक्ता ग्रंथ की पुस्तिका हमें कहती है कि धन्य है वे जिन्होंने आशा नहीं खोया है। यदि जीवन की अवधि हमारी लंबी होती है तो शायद भविष्य को हम नहीं बल्कि अतीत की बातों को देखते हैं। अपने अस्पताल में रहने के दौरान संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में लिखते हैं, हमारे शरीर कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हम में प्रार्थना, प्रेम करने, अपने को देने, एक दूसरे के संग साझा होने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। जहां विश्वास में हम सदैव आशा में चमकते हैं, हम अपने में एक स्वतंत्रता को वहन करते हैं जिसे कोई भी मुसीबत हमसे छीन नहीं सकती है। यह हमारे लिए प्रेम और प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। हर कोई सदैव प्रेम और प्रार्थना कर सकता है। अपने प्रेम करने वालों के लिए हमारा स्नेह, पति या पत्नी के लिए जिनके संग हमने लंबा जीवन व्यतीत किया है, हमारे बच्चे, नाती पोते जो हमारे दिनों को प्रज्वलित करते हैं, हमारे शक्तिहीन होने पर भी धूमिल नहीं होते हैं। वास्तव में उनका स्नेह सदैव हमारे लिए शक्ति का कारण बनता और हमें आशा और सांत्वना से भर देता है। संत पापा लियो चौदवें ही अपने संदेश के अंत में कहते हैं, प्रेम की इन निशानियों में हम अपने को ईश्वर में आधारित पाते हैं जो हमें साहस प्रदान करता और हमें इस बात की याद दिलाता है जो भी कि हमारा बाह्य स्वरूप खत्म होता है, हमारा आंतरिक स्वरूप सदैव नवीन होता है, विशेषकर जब हम बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं। आइए हम ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। हम प्रार्थना और मिस्सा में उनसे मिलने द्वारा अपने को नवीन करें। हम अपने विश्वास को प्रेम से दूसरों के लिए बांटें जिसे हमने इतने सालों तक जिया है, अपने परिवारों में और दूसरों के संग अपनी मुलाकात में। हम सदैव ईश्वर के भले कार्यों के लिए कृतज्ञ बने रहें, अपनों के संग एकता में बने रहें, अपने हृदय उनके लिए खोलें जो हमसे दूर चले गए हैं और विशेषकर उनके लिए जो जरूरतमंद हैं। इस भांति हम दूसरों के लिए आशा के निशाने बनेंगे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। दुनिया के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक मंडल संत पापालियो 14वें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर आज रात 9:30 बजे बोर्गो लौदातो सी में शांति की प्रार्थना के लिए समय समर्पित करेगा, जिसमें शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र और अंद्रेया बोचेली संस्थान इसकी अगुवाई करेंगे। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800वें साल पूरे होने के समारोह का हिस्सा है। संत पापालियो 14वें संत फ्रांसिस के प्राणियों के गीत के टेक्स्ट से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना और चिंतन के पल का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे जरूरी हिस्सों में से एक म्यूजिक होगा। पवित्र भूमि युगांडा, हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि और कहानियों को साथ लाएंगे, जो अक्सर युद्ध, गरीबी और चुनौतियों से जुड़ी होती है। हालांकि उनकी आवाजें म्यूजिक और कला की ताकत का सबूत हैं, जो बातचीत, उम्मीद और मेल मिलाप की भाषा है, जिन्हें दुनिया भर में समझा जाता है। क्वायर में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद और मुलाकात की अहमियत को फिर से जान सकते हैं। संत पापा के साथ प्रार्थना और म्यूजिक का यह समय 10 दिन की उस मीटिंग का अंत है, जिसने पहली बार वैश्विक गांव की भावना से म्यूजिक के जरिए क्वायर और शिक्षकों को जोड़ा। प्रार्थना कार्यक्रम के अंत में हर देश के क्वायर प्रतिनिधि संत पापा को अपने देश का हाथ से बना तोहफा देंगे, जो उसकी संस्कृति पहचान दिखलाएगा और दल का शुक्रिया अदा करेगा। उधर संत पापालियो 14वें के परोपकार के कार्य, जो उदार सेवा के लिए गठित विभाग के जरिए किया जाता है, इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यूक्रेन और मध्य पूर्व जैसे युद्ध से तबाह इलाकों को लगातार समर्थन देने के साथ साथ यह सभी 5 महाद्वीपों में मानवीय मदद पहुंचाना जारी रखता है। दान में देरी नहीं की जा सकती। संत पापालियो 14वें ने 6 जून को स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में सेडिया 24 होरेस सोशल प्रोजेक्ट के स्टाफ और लाभार्थियों से ये बात कही। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, अब ये इंसानी चेहरे ले लिए हैं। संत पापा के अल्मोनेर अगुस्टीनियन महाधर्माध्यक्ष लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि एकजुटता कोई सीमा नहीं जानती और यह राष्ट्रवाद से बंधी नहीं है। इसे वहां पहुंचना चाहिए जहां दुख और तुरंत जरूरत हो। इसलिए हम यह पक्का करते हैं कि यह तेज, व्यवहारिक और अच्छी तरह से समायोजित हो, जिसमें सबसे गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाए, ताकि वे संत पापा के नज़दीकी और कोमलता का अनुभव कर सकें, कलीसिया के प्यार भरे आलिंगन के रूप में, जो उनका साथ देता है और उन्हें सहारा देता है। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही विभाग के जरिए भेजी गई मानवीय मदद ने युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के लोगों के साथ साथ गाजा पट्टी और लेबनान के लोगों की लगातार मदद की है। उनकी मदद की कोशिशें यूरोप और मध्य पूर्व से लेकर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक दुख तकलीफों की दुनिया को बिना किसी भेदभाव के पक्के इरादे से देखती है। यह एक ऐसा नक्शा है जिसमें भूकंप और चक्रवात, सूखा और बाढ़ तो है ही, साथ ही रोजमर्रा की हिंसा, छोड़े गए बच्चे और सिर्फ खाना ढूंढने के लिए जूझ रहे परिवार भी हैं। उधर कल स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 4:30 बजे दक्षिण पश्चिमी जापान में आए 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप में मरने वालों की शुरुआती संख्या बढ़कर कम से कम 13 हो गई है और करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी टोक्यो के करीब 900 किलोमीटर दूर कुश्यू द्वीप में कुमामोटो इलाके में पड़ा। जापान की हालात के बारे में प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपने आधिकारिक बयान में बताया, अब तक 13 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन करीब 30 लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभी भी तलाश जारी है।
दोनों जगहों पर जहां काशीमा शहर में एयान मॉल शॉपिंग सेंटर था जो कल भूकंप में ढह गया और पेपर मिल जहां एक चिमनी गिर गई थी, कुमामोटो स्टेशन में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और एक तरफ लुढ़क गई। साथ ही शहर के किले की दीवारों के गिरने की भी पुष्टि मिली है। इसके अलावा कई आग लगने की खबरें आई हैं। साथ ही बिजली जाने के कारण 40,000 परिवारों के पास बिजली नहीं है और सड़कों एवं हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है जो सुरक्षा कारणों से बंद है। उधर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई। खबर है कि यह मुलाकात पिछले महीनों की तुलना में कम तनावपूर्ण थी, लेकिन दोनों ने सुलह की बात की। ट्रंप ने इस मुलाकात को बहुत सकारात्मक कहा और बताया कि कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई। अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमले रोकना था ताकि नई बातचीत हो सके, कुछ ही दिनों तक चला। रातों रात तेहरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला किया। पेंटागन के मुताबिक सभी मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन इस कार्यवाही से लड़ाई में नई तेजी आई। जवाब तेज था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सूत्रों के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया पर छापे मारे, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। उधर मोजाम्बिक में लगभग 5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यह सभी के लिए शिक्षा आंदोलन MEPT के अध्ययन के अनुसार है, जिसे मापुटो में सामाजिक और आर्थिक अध्ययन संस्थान IESE के साथ मिलकर किया गया था। इस अध्ययन में उन मुश्किलों पर जोर दिया गया है जो शिक्षा मंत्रालय के पहले से दिए गए तरीकों के बावजूद स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को स्कूल में बनाए रखने और फिर से जोड़ने में होती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है 2025 में दादा दादियों और बुजुर्गों के लिए संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें संत अन्ना और संत ज्वाकिम पर्व के अवसर पर 2025 माता कलिस्से द्वारा स्थापित दादा दादियों और बुजुर्गों के 5वें विश्व दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा था कि आशा हमारे लिए निरंतर एक खुशी का उद्गम बनती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। उस आशा को जब लंबी उम्मीद की चाह स्वरूप आग में तपाई जाती है तो वह हमारे लिए एक गहरी खुशी का स्रोत बनती है। बुजुर्गों को दिए गए अपने संदेश में संत पापा लियो ने कहा कि पवित्र धर्म ग्रंथ हमारे लिए इसका अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिन्हें ईश्वर ने अपने जीवन की बढ़ती आयु में अपनी मुक्ति योजना का अंग बनाया। हम अब्राहम और सारा के उम्र के बारे में विचार कर सकते हैं, जो ईश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करने हेतु कठिनाई का अनुभव करते हैं कि उन्हें एक पुत्र मिलेगा। उनकी संतानहीनता उन्हें भविष्य के लिए आशाहीन बना देती है। यूहन बपतिस्ता के जन्म संदेश के संबंध में भी जकरायाह को ऐसा ही प्रतीत होता है। यह कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी पत्नी की उम्र ढल चुकी है। बुजुर्ग अवस्था, बांझपन और शारीरिक ढलान इन नर नारियों में जीवन के प्रति आशा और उर्वरकता को धूमिल कर देती है। निकोदेमुस के द्वारा यीशु को पूछे गए सवाल में स्वामी का पुनः जन्म लेने की बात हमारे लिए अलंकारपूर्ण लगता है। बुढ़ापे में एक व्यक्ति पुनः कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर पुनः जन्म ले सकता है? यद्यपि जब कभी हम यह सोचते कि चीजें नहीं बदली जा सकती हैं, ईश्वर हमें अपने मुक्ति की शक्ति से आश्चर्यचकित करते हैं। संत पापा लियो ने अपने संदेश में कहा कि ईश्वर निरंतर अपनी दिव्य शक्ति को लोगों की बढ़ती आयु में प्रदर्शित करते हैं। ऐसा केवल अब्राहम और सारा, जकरियस और एलिजाबेथ के संग नहीं होता है, लेकिन हम इसे मूसा के साथ भी घटित होता पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने लोगों की मुक्ति हेतु 80 साल की आयु में बुलाते हैं। ईश्वर इस भांति हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनकी दृष्टि में बुजुर्गावस्था कृपा और आशीष का एक समय है और बुजुर्ग जन उनके लिए आशा के प्रथम साक्षी हैं। संत अगुस्टिन कहते हैं, अपनी शक्ति को क्षीण होने दो, जिससे मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर वास करे और तुम प्रेरित के संग कह सको, जब मैं कमजोर हूँ तो मैं अपने में शक्तिशाली हूँ। लोगों का उम्र में बढ़ना हमारे लिए एक निशानी है कि हम आत्म परख करने हेतु बुलाए गए हैं, जिससे हम इतिहास के इस क्षण को अनुभव कर सकें। संत पापा लियो ने अपने संदेश में आगे कहा कि कलीसिया और दुनिया को हम पीढ़ियों के ज्योति रूपी आड़ में समझ सकते हैं। बुजुर्ग अवस्था का आलिंगन करना हमारे लिए इस बात को समझने में मदद करता है कि जीवन वर्तमान पड़ाव से बढ़कर है, जिसे हम पिछली चीजों और व्यर्थ के संबंधों में नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में जीवन सदैव भविष्य की ओर इंगित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम याकूब के द्वारा अपने नाती पोतों को योसेफ के संतानों को दिए गए आशीर्वाद की चर्चा सुनते हैं। वे उन्हें भविष्य की ओर आशा में देखने की अपील करते हैं, जहां ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। यदि यह सच है कि कमजोर बुजुर्गों को युवा शक्ति की जरूरत हो, तो यह उतनी ही सच्चाई है कि अनुभवहीन युवाओं को बुजुर्गों के अनुभव रूपी साक्ष्य की आवश्यकता है, जिससे वे विवेक में भविष्य का निर्माण कर सकें। कितनी बार हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे लिए भक्ति, सामाजिक गुण और निष्ठा, यादों और परीक्षा की घड़ी में धैर्य के उदाहरण बनते हैं। उनके द्वारा आशा और प्रेम में मिली मूल्यवान विरासत हमारे लिए सदैव कृतज्ञता और धैर्य में बने रहने का एक स्रोत बनता है। संत पापा लियो कहते हैं, हम बुजुर्गों की सेवा करने को बुलाए जाते हैं, जिससे वे मुक्ति का अनुभव कर सकें। विशेषकर अकेलेपन और छोड़ दिए गए भाव से बुजुर्गावस्था कृपा की स्थिति है, जहाँ उदासीनता से दूर हम उनकी सेवा करते हुए सुसमाचार की खुशी का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में संत पापा हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कराते हैं कि हर पल्ली संघ और कलिसियाई दल को चाहिए कि वे अपने में अगुवे बने एक आंदोलन की, जिसमें कृतज्ञता और सेवा के भाव हों, जहां हम बुजुर्गों की निरंतर भेंट करते हों, उनके लिए तथा उनके संग प्रार्थना और सेवा के तंत्र स्थापित करते हों। हम परित्यक्त जनों के संग संबंध स्थापित करते हों, जिससे वे आशा और मानवीय सम्मान का अनुभव करें। ख्रिस्तीय विश्वास हमें अधिक साहसी, बड़ा सोचने और वर्तमान चीजों से असंतुष्ट होने को प्रेरित करता है। यह हमें परिवर्तन हेतु कार्य करने की मांग करता है, जिससे बुजुर्गों को प्रेम और सम्मान मिल सके, जिसके वे हकदार हैं। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा, प्रवक्ता ग्रंथ की पुस्तिका हमें कहती है कि धन्य है वे जिन्होंने आशा नहीं खोया है। यदि जीवन की अवधि हमारी लंबी होती है, तो शायद भविष्य को हम नहीं बल्कि अतीत की बातों को देखते हैं। अपने अस्पताल में रहने के दौरान संत पापा फ्रांसिस इस संदर्भ में लिखते हैं, हमारे शरीर कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हम में प्रार्थना, प्रेम करने, अपने को देने, एक दूसरे के संग साझा होने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ विश्वास में हम सदैव आशा में चमकते हैं, हम अपने में एक स्वतंत्रता को वहन करते हैं, जिसे कोई भी मुसीबत हमसे छीन नहीं सकती है। यह हमारे लिए प्रेम और प्रार्थना करने की स्वतंत्रता है। हर कोई सदैव प्रेम और प्रार्थना कर सकता है। अपने प्रेम करने वालों के लिए हमारा स्नेह, पति या पत्नी के लिए जिनके संग हमने लंबा जीवन व्यतीत किया है, हमारे बच्चे, नाती पोते जो हमारे दिनों को प्रज्वलित करते हैं, हमारे शक्तिहीन होने पर भी धूमिल नहीं होते हैं। वास्तव में उनका स्नेह सदैव हमारे लिए शक्ति का कारण बनता और हमें आशा और सांत्वना से भर देता है। संत पापा लियो चौदहवें अपने संदेश के अंत में कहते हैं, प्रेम के इन निशानियों में हम अपने को ईश्वर में आधारित पाते हैं, जो हमें साहस प्रदान करता और हमें इस बात की याद दिलाता है, जो भी कि हमारा बाह्य स्वरूप खत्म होता है, हमारा आंतरिक स्वरूप सदैव नवीन होता है, विशेषकर जब हम बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं। आइए हम ईश्वर में अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। हम प्रार्थना और मिस्सा में उनसे मिलने द्वारा अपने को नवीन करें। हम अपने विश्वास को प्रेम से दूसरों के लिए बांटें, जिसे हमने इतने सालों तक जिया है, अपने परिवारों में और दूसरों के संग अपनी मुलाकात में। हम सदैव ईश्वर के भले कार्यों के लिए कृतज्ञ बने रहें, अपनों के संग एकता में बने रहें, अपने हृदय उनके लिए खोलें जो हमसे दूर चले गए हैं, और विशेषकर उनके लिए जो जरूरतमंद हैं। इस भांति हम दूसरों के लिए आशा के निशाने बनेंगे, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। दुनिया के संकट प्रभावित हिस्सों से बच्चों और युवाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गायक मंडल संत पापालियो 14वें और अंद्रेया बोचेली के साथ मिलकर आज रात 9:30 बजे बोर्गो लौदातो सी में शांति की प्रार्थना के लिए समय समर्पित करेगा, जिसमें शांति की सार्वभौमिक भाषा के रूप में संगीत का उपयोग किया जाएगा। लौदातो सी उच्च शिक्षा केंद्र और अंद्रेया बोचेली संस्थान इसकी अगुवाई करेंगे। यह कार्यक्रम शांति का गीत संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु के 800वें साल पूरे होने के समारोह का हिस्सा है। संत पापालियो 14वें संत फ्रांसिस के प्राणियों के गीत के टेक्स्ट से प्रेरणा लेते हुए दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना और चिंतन के पल का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे जरूरी हिस्सों में से एक म्यूजिक होगा। पवित्र भूमि युगांडा, हैती और इटली से 160 से ज्यादा युवा संगीतकार अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि और कहानियों को साथ लाएंगे, जो अक्सर युद्ध, गरीबी और चुनौतियों से जुड़ी होती है। हालांकि उनकी आवाजें म्यूजिक और कला की ताकत का सबूत हैं, जो बातचीत, उम्मीद और मेल मिलाप की भाषा है, जिन्हें दुनिया भर में समझा जाता है। क्वायर में अपने अनुभव के जरिए बच्चे और युवा आपसी समझ, एक सामान्य मकसद और मुलाकात की अहमियत को फिर से जान सकते हैं। संत पापा के साथ प्रार्थना और म्यूजिक का यह समय 10 दिन की उस मीटिंग का अंत है, जिसने पहली बार वैश्विक गांव की भावना से म्यूजिक के जरिए क्वायर और शिक्षकों को जोड़ा। प्रार्थना कार्यक्रम के अंत में हर देश के क्वायर प्रतिनिधि संत पापा को अपने देश का हाथ से बना तोहफा देंगे, जो उसकी संस्कृति पहचान दिखलाएगा और दल का शुक्रिया अदा करेगा। उधर संत पापालियो 14वें के परोपकार के कार्य, जो उदार सेवा के लिए गठित विभाग के जरिए किया जाता है, इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। यूक्रेन और मध्य पूर्व जैसे युद्ध से तबाह इलाकों को लगातार समर्थन देने के साथ साथ यह सभी 5 महाद्वीपों में मानवीय मदद पहुंचाना जारी रखता है। दान में देरी नहीं की जा सकती। संत पापालियो 14वें ने 6 जून को स्पेन की अपनी प्रेरितिक यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में सेडिया 24 होरेस सोशल प्रोजेक्ट के स्टाफ और लाभार्थियों से ये बात कही। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, अब ये इंसानी चेहरे ले लिए हैं। संत पापा के अल्मोनेर अगुस्टीनियन महाधर्माध्यक्ष लुइस ने वाटिकन न्यूज को बताया कि एकजुटता कोई सीमा नहीं जानती और यह राष्ट्रवाद से बंधी नहीं है। इसे वहां पहुंचना चाहिए जहां दुख और तुरंत जरूरत हो। इसलिए हम यह पक्का करते हैं कि यह तेज, व्यवहारिक और अच्छी तरह से समायोजित हो, जिसमें सबसे गरीब लोगों पर ध्यान दिया जाए, ताकि वे संत पापा के नज़दीकी और कोमलता का अनुभव कर सकें, कलीसिया के प्यार भरे आलिंगन के रूप में जो उनका साथ देता है और उन्हें सहारा देता है। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही विभाग के जरिए भेजी गई मानवीय मदद ने युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के लोगों के साथ साथ गाजा पट्टी और लेबनान के लोगों की लगातार मदद की है। उनकी मदद की कोशिशें यूरोप और मध्य पूर्व से लेकर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक दुख तकलीफों की दुनिया को बिना किसी भेदभाव के पक्के इरादे से देखती है। यह एक ऐसा नक्शा है जिसमें भूकंप और चक्रवात, सूखा और बाढ़ तो है ही, साथ ही रोजमर्रा की हिंसा, छोड़े गए बच्चे और सिर्फ खाना ढूंढने के लिए जूझ रहे परिवार भी हैं। उधर कल स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 4:30 बजे दक्षिण पश्चिमी जापान में आए 7.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप में मरने वालों की शुरुआती संख्या बढ़कर कम से कम 13 हो गई है और करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी टोक्यो के करीब 900 किलोमीटर दूर कुश्यू द्वीप में कुमामोटो इलाके में पड़ा। जापान की हालात के बारे में प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपने आधिकारिक बयान में बताया, अब तक 13 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन करीब 30 लापता लोगों को ढूंढने के लिए अभी भी तलाश जारी है।
दोनों जगहों पर जहां काशीमा शहर में एयान मॉल शॉपिंग सेंटर था जो कल भूकंप में ढह गया और पेपर मिल जहां एक चिमनी गिर गई थी, कोमामोटो स्टेशन में एक ट्रेन पटरी से उतर गई और एक तरफ लुढ़क गई। साथ ही शहर के किले की दीवारों के गिरने की भी पुष्टि मिली है। इसके अलावा कई आग लगने की खबरें आई हैं। साथ ही बिजली जाने के कारण 40,000 परिवारों के पास बिजली नहीं है और सड़कों एवं हवाई अड्डे को नुकसान हुआ है जो सुरक्षा कारणों से बंद है। उधर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई। खबर है कि यह मुलाकात पिछले महीनों की तुलना में कम तनावपूर्ण थी, लेकिन दोनों ने सुलह की बात की। ट्रंप ने इस मुलाकात को बहुत सकारात्मक कहा और बताया कि कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई। अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता, जिसका मकसद ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमले रोकना था ताकि नई बातचीत हो सके, कुछ ही दिनों तक चला। रातों रात तेहरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला किया। पेंटागन के मुताबिक सभी मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन इस कार्यवाही से लड़ाई में नई तेजी आई। जवाब तेज था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सूत्रों के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया पर छापे मारे, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए। उधर मोजाम्बिक में लगभग 5 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यह सभी के लिए शिक्षा आंदोलन MEPT के अध्ययन के अनुसार है, जिसे मापीटो में सामाजिक और आर्थिक अध्ययन संस्थान IESE के साथ मिलकर किया गया था। इस अध्ययन में उन मुश्किलों पर जोर दिया गया है जो शिक्षा मंत्रालय के पहले से दिए गए तरीकों के बावजूद स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को स्कूल में बनाए रखने और फिर से जोड़ने में होती हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।